भई किंकनी सबद चणत काल खेल पाए जीव। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके, इस बम जान ध्यान धरत ही चार जीव। सच साच सिर लिया

जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़ो कैलाश रहो, जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़ो कैलाश रहो, जैसे कोट जन्म तप ऊर्ध्वमुखी बसंतर में तन दाहे दियो, जैसे लाख बार कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग ठयो, हुन अमृत नाम विशेष इति हुन अमृत नाम विशेष।

गुर सिख है, गुर सिखो गुर सिख है, पीर पीरो कोई, शब्द सुरत चेला गुरु परमेश्वर सोई, दर्शन दृष्ट ध्यान तार गुर मूर्त।

वाहे गुरु गुर मंत्र है जप हूं मैं खोई नमस्कार गुरुदेव को सत नाम जिस मंत्र सुनाया पव जल विचों कढ के मुक्त पदार्थ माए समाया पव जल विचों कढ के ए मुक्त पदार्थ माए समाया।

जन्म मरण विच दुख सबाया जम डंड सिरों ना उतरे साकत दुर्जन जन्म गवाया चरण गहे गुरुदेव के सत शब्द दे मुक्त कराया पाओ भगत गुरपुरब कर पाओ भगत गुरपुरब कर नाम दान इशनान दृढ़ाया उज्जे

सेवक के भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभु सदा सलामत।

छा मत देओ, दयाल प्रभु जित तुम्हें आराधा। छा मत देओ दयाल प्रभु, सज्जन तू है शैन तू, मैं तुझ ऊपर बहुमान।

अपने परमेश्वर उस अकाल पुरख दा दीवाना हां, हों हर बिन अवर ना जाना। मैं हरी तो बगैर होर किसे नु भी जानदा नहीं, होर किसे अगे मैं झुकदा नहीं, ते दीवाना भी मैं उसे हरी दा हां। पर एक गल कही तो दीवाना जानी जां पै दीवाना होए, असी ते उन्नू दीवाना आखदे हां जेड़ा रब दे डर विच रब दा मन विच डर रखे, रब दे पै विच जेड़ा रहिंदा है ओह दीवाना है। अते नाल किया जेड़ा एकाकार कमाए एक परमेश्वर दे हुक्म विच रवे, परमेश्वर दुख देवे पावे सुख देवे, जेड़ा उस परमेश्वर दी बंदगी करदा है, साहब जी कहंदे हन असल विच ओ दीवाना है। ते नाले के हुक्म पछाणे खसम का, खसम उस अल्लाह वाहिगुरु राम नू के कि जेड़ा अपने खसम दा परमेश्वर दा हुक्म पछाणदा है, हुक्म मनदा है, अपनी सियानप नहीं वरतदा, असल विच ओ परमेश्वर दा दीवाना है। ते नाल ए भी कहा तो दीवाना जानिए जा साहिब तरे पिया, ओ दीवाना है जेड़ा अपने मालक नाल प्यार करदा है, मंदा जाने आप को आवर पला संसार, जेड़ा अपने आप नू मंदा समझे संसार नू चंगा समझे, असल विच ओ दीवाना है। अक्सर देखदे हैं लोग आप ते औगणा दे परे हैं, अपने औगण लुकांदे हैं ते दूसरियां दी बुराई करदे हैं, पर सतगुरु जी कहंदे हैं अपनियां बुराइयां दुनिया तू लुको सकदा है पर परमेश्वर तू नहीं, उस वाहेगुरु अल्लाह तू नहीं, क्योंकि ओ सब कुछ जानदा है। धन गुरु नानक साहब जिन्हां कदी किसे नू माड़ा नहीं किया। एक नगर विच गए, उस नगर दे लोकां ने धन गुरु नानक साहब नू आदर नहीं दिता, सगा पत्थर मारे, ते धन गुरु नानक साहब कहन लगे उन्हां लोकां वल देख के वसदे रहो। फिर दूसरे नगर गए, उत्थे दे लोकां ने बड़ा आदर मान कीता, बड़ी सेवा कीती, ते धन गुरु नानक साहब ने कहा तुसी उजड़ जाओ। ता सेवक ने पूछया महाराज जिन्हां पत्थर मारे उन्हां नू कहा वसदे रहो, ते जिन्हां ने सेवा कीती उन्हां नू कहा उजड़ जाओ, ये क्यों कहा? धन गुरु नानक साहब कहन लगे भाई जिन्हां पत्थर मारे जिन्हां दे मन विच बुराई है, जेड़े नेकी नहीं करते, असा उन्हां नू कहा वसदे रहो इत्थे ही रहो, क्यों कि जे किधरे होर जावोगे उत्थे भी बुराई फैलावोगे, ते जिन्हां ने की कीती उन्हां नू इस वास्ते कि आओ उजड़ जाओ, भाव कि होर जगह जाके वसो, तुसी नेकियां करदे हो तां कि तुहाडे वल देख के दूसरे लोग भी नेकियां करन। पत्थर मारन वालियां नू बुरा नहीं कहा, सगा सतगुरां ने कहा ए लोग बुराई करते हैं, इन्हां दी मत इतनी है, ते जे धन गुरु नानक साहब नू पुछिए महाराज तुहानू लोग दीवाना कह रहे हैं मस्ताना कह रहे हैं, ते साहब जी कहंदे हैं भाई सचमुच मैं दीवाना हां पर अपने परमेश्वर

काज ना कछु है। हे निरंकार, ए जितना भी जल है ना धरती ते, ए मेरे किसे काम नहीं। जिना दे हीए विच शिक है मालक दे मिलन दी, ते कोई उना नू कह देवे भाई राज भाग दुनिया दे सुख प्राप्त कर ले, दर्शना

0: नानक पातशाह जी दे दर दी सेवा करदिया भाई लैणा जी हर इम्तिहान विचों पास होए। एक वेरा दा जिक्र है, गुरु नानक सच्चे पातशाह लैणे नूं कहण लगे बाहर जाके वेख कितनी कु रात होर है, ते अपनी सियाणप नहीं कीती, चतराई नहीं कीती, आके कहण लगे गरीब निवाज जितनी तुसी बिताई है बीत चुकी है, जितनी बाकी है वो भी तुहाडे हुक्म विच बीत रही है, उचारण करो श्री। अकाल पुरख वाहिगुरु दा रूप समझ के भाई लहणे ने सेवा कीती। अज अखीरला परचा है, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने बड़ा वैराट रूप धारण कर लिया, आप अगे अगे हन ते पिछे संगतां जा रही हैं। अगे जाके की तकिया, तांबे दा ढेर पिया, आखिया भाई तांबा चुको लै जाओ वेचो, घर दा निर्वाह करो, जाओ साडे मगर तुहानू की मिलेगा। जिहड़े तांबे दे इच्छक सन उन्होंने चुकिया ते वापस मुड़ गए। अगे जाके की तकिया, चांदी दा ढेर पिया, आ चुक लो भाई चांदी, साडे नाल आके तुहानू की मिलेगा। चांदी दे व्यापारी चांदी लैके चले गए, अगे जाओ देखिया तां सोने दा ढेर पिया, भाई जितने कु रहिंदे हो आ चुक लो सोने। चांदी सोने दे व्यापारी सोना लै गए, होर बियाबान जंगल विच जाके की तकिया, हीरियां मोतियां दी तेरी पई है, मुठियां भर लो भाई, साडे कोलों तुहानू की मिलेगा। हीरे मोतियां दे व्यापारी ओ लै गए, हुण धन गुरु नानक पातशाह जी ने जदों मगर देखिया ना, होर तां सारे चले गए हन, पर एक भाई लैणा जी खड़े हन। लैणिया इतनियां दातां लुटाईयां हन, इतने पदार्थ वंडे हन, कोई तुम्हें पदार्थ चुक के चला जांदा, तू साडे मगर आ गए। भाई लहणा जी दे नैन कटोरे बाहर आए, ओ मेरा दे साईं, ओ गरीब निवाज सच्चे पातशाह, जेड़े कुछ लै के चले गए हन, संसार ते उन्हां दा कोई रिश्तेदार है, कोई घर बार है, कोई शाक संबंधी उन्हां दा है, कोई आसरा उन्हां दा है, पर मेरा तां तेरे बिना कोई होर आसरा ही नहीं, मैं किस तरह मुड़ जावां, मेरा तो सब कुछ तू ही है। जदों ए गल आखी तां धन गुरु नानक पातशाह जी ने भाई लहणे नूं अपने गल नाल ला लिया, लहणे को अपने अंग लगा, लहणे को अंगद कर दिया, दूसरे गुरु नानक बना दिता। ए दातां मिलदियां हन गुरु नानक दे दर ते सेवा करके, पर सेवक होके आराम ना पाले, इस दर दा भिखारी बन गया तो अहंकार ना करे, मान ना करे, ते फिर केड़ी वस्तु है जेड़ी नहीं मिलेगी भाई तेनू। इसलिए गुर पीरां की चाकरी, गुरु दे दर दी सेवा तो औखी है, गुर सिख लंघ गुरु पै जाई, समुद्र सागर होवे बहु खारा, बड़ा औखा है गुरु दे मार्ग ते चलना। इसे लई हजूर कहंदे ने, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर दरीजे सिर दीजे कान न कीजे। आख्या जे इस प्रेम दी गली विचों लंघना चाहना है तो फिर इस सिर दा सरफा कदे ना मंगी, जे सिर भी लग जाए तां वी इह सस्ता सौदा समझी। सात संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु।
0: सिर दीजे कान ना कीजे, ते फिर जिन्हां ने आपा गुरु दे अर्पण कर दिता प्यारी सात संगत, फिर ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए, ओ दाता नहीं दाता वंडन वाले बन गए, दातार बन गए, जिन्हां ने गुरु नानक दे दर दी सेवा कीती है। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੜੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣ ਗਏ।

तू मेरे कम लग जा मैं तेरे कम लग जाना मैनू तू अपना कम दे दे ते मेरा कम तू ले संसार जैसा चल जाता एक दूसरे दे काम आना जिस काम की जिनी जिनी समर्था हो बड़े पुराने समय तो बंदा काम का लैन देन करता रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता है उनू जाके बेनती करा तू ये कर दे इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार किसी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा किया है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मुंह भी वेखना पिया हो महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर कम आउण दी एक दूजे का कम करन दी सांझ पाउणी है तू वाहगुरू नाल पा के वेख मालिक तू जो चाहे कर सकना है तेरी समर्था महान है करता पुरख जू है सब कुछ कर सकना ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैथों कुछ भी नहीं हो सकता जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा अरदास तो हो सकती है और सच्ची गल जानना अरदास च खड़े हो जाना ही रब का काम है ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे में और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण मस्तक न्यो जाए इहदे दो अर्थ हुंदे ने हथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं ये हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन आप करता पुरख हो इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना यह हथ बज गए ये हथ तेरे सामने जुड़ गए इन्हां तो कुछ नहीं होना एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना किसी दूसरे का अभिवादन करना हो आदर करना हो भी हथ बनने लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना बल्कि जिसले मत्था टेक देने इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैन आया लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने मत्था टेकने पातशाह इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जा मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता मेरे सोचने ची बड़िया भुलां ने मेरी थां सोचो भी तुसी मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो मैं तुहाडी अरदास जुड़िया होवां अरदास अरदाश्त बेनती कर रहा होवां अर्ज कर रहा होवां मैं केवल अरदास जुड़िया होवां एक ते जुड़ जाए ना बंदा साहिबां ने विश्वास दृढ़ कराए बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है ये वखरी गल है मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है जुड़ना ही औखा है अरदास जुड़ जाना ही औखा है नहीं जुड़े रहिंदा तो इहदे वास्ते भी अरदास करिए बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै अपनी भगती नाल मेरी लिव एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श फिर मैं अरदास च लगा होवांगा हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा भगती च लगा होवांगा प्रभु का होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं पिया वाहिगुरू का कोई काम साडे गोचरा नहीं प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए अरदास करनी आ जावे ना फिर की हुंदा है जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता एक तां हुंदा ना काम हो जाना काम कर लेना काम नबेड़ लेना ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा घबराया हुंदा डगमगाउंदा है ते जे किते काम हो जाए हंब के बह जांदा है पसीने पूंजदा सजना मित्रा नूं कहिंदा है शुकर करना काम निबड़ गया बंदा केवल नबेड़ सकदा लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं सतगुरु कार्ज सवारदा वड्डी वड्याई अचरज शोभा उस कार्ज विच शोभा हुंदी माण हुंदा सत्कार हुंदा उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी
ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ

जाओ निवाजू ही ए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रब दा घर हन इन्हां दा अपमान करना ठीक नहीं क्योंकि एक पासे आपां कहने आ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ए रब दा वाहेगुरु दा राम दा घर है भगवान दा घर है पर इंसान अज दा कहो जिहा हो गया है एक पासे कहंदा है ओ रब दा घर है जद झगड़े आपस दे हो ते फिर इंसान जिहड़ा है ओ इस पासे तुर पैंदा है कि धार्मिक स्थान भी साड़न तों ओ गुरेज नहीं करदा जिहड़े लोग धार्मिक स्थानां दा अपमान करदे हन कि ओ अपने धर्म दे नाल इंसाफ करदे हन कि ओ जिस रब दे नाल प्यार करदे हन अपने मन कोलों पुछन कि मेरे इस काम ते मेरा रब मेरा परमेश्वर खुश हो रहा है अपने मन दे नाल विचार करो ते इसका जवाब खुद मिल जाएगा।

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी नु दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे। आप भावे दुखी हो।

और दूसरे पासे ब्राह्मण ने उपदेश कीता, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे। जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा, वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, फिर ते झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है, फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किहदे नाल लड़ा

ऐसा उपदेश गुरबाणी दा अपने धर्म च पक्के रहो। तुसी जिस धर्म नूं भी मनदे हो पर असल विच धर्मी ओह है जिहड़ा सब नाल प्यार करे, क्योंकि धर्मी किसे नाल नफरत नहीं कर सकता। गुरु घर विच सिख धर्म विच अणख नाल जीवना, धर्म दे किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, यह उपदेश है। और यही उपदेश सारिआं वास्ते सांझा है। अणख नाल जीओ, अपने धर्म च पक्के रहो। पर धर्मी होण दा मतलब यह नहीं कि आपां दूसरिआं नूं माड़ा कहिए या दूसरिआं दी निंदिआ करिए। कमियां हुंदिआं हन, पर उन्हां कमियां नूं दूर करना इंसान दा फर्ज बनता है। जिस वेले धन गुरु नानक साहब दा अवतार होया, ए झगड़े उस वेले भी सन, ते गुरु नानक साहब जी महाराज जिस वेले मुल्तान देश गए, पीरां फकीरां दे नाल ज्ञान चर्चा हुई। पीरां फकीरां ने गुरु नानक साहब नूं सवाल कीता, पुछन गल ईमान दी, काजी मुल्ला इकट्ठे होई।

शैताना दे राह चल पी ए पुली हुई दुनिया रब न समझ नहीं सकी क्योंकि रब का नाम भूलड़ा थोड़ी है वो तो इंसान नू रब।

0: दुर्लभ है।
1: ये बार बार प्राप्त नहीं होना। जिसनु तू ऐवी जान ले
0: कबीर मानस जन्म दुर्लभ

क्योंकि तू नेक कर्म जेड़े कर सकना है इस जन्म दे विच। सतगुरु ने जीव तेनू एक चांस दिता है। चांस इसलिए मिले है कि मनुखी जामे अंदर

एक अवसर मिले। कहिंदे ने अवसर आया हथ गवा दिता ते बार बार नहीं मिलन। इस जन्म अंदर ही प्रभु दे नाल तेरा मिलाप हो सकदा। कबीर साहब का ख्याल बड़ा सुंदर। कबीर साहब कहिंदे ने जीव नू कि जीव नाम जप सिमरन कर इस जन्म नू सफला कर ले। लेकिन मनुख अनमोड़ है नहीं जाने आ। लेकिन कहिंदे ने एक दिन

गई है कभी से मिट के कि बल्द बड़ा सुंदर है लेकिन इतनी मार पैण दे बावजूद भी काम नहीं करता है कौन कहिंदे ने नीज पा के तकिया वेख्या आख्या ते ओही भुलिया जीव है जिन्नू असी उपदेश करदे सां कि नाम जप ते मनुखी जामा सफला होवे लेकिन फिर किसे जूंड दे विच पैगे। कबीर साहब उहदे नाल गल्लां करदे ने कहिंदे ने देख जीव कितना सुंदर तू लगदा सैं लेकिन अज तेरी हालत कैसी चार पांव दो पांव दी जगह चार पांव लग गए ने दोए सिंह गुंग मुख मुखो गुंगा हो गए हैं सिर ते दो सिंह लग गए ने तब कैसे गुण गई है हुण तू हरि वाहिगुरु दे गुण नहीं गायन कर सकदा हालत कैसी है उठत बैठत ठेंगा पर है अब कत मूंह लुकई है जीव हुण क्यों मूंह लुकाउना उठदियां बहिंदियां तैनू चोटां वज रही है कि यह एक जीवली उपदेश है नहीं साडे सारिआं लई जे जीव नाम नहीं जपेगा इसे तरह तेनू भी चोटा ही पैनगियां।

पेट अ गई है। जन पग तन का क्यों न मानो, तेरी हालत ऐसी क्यों हो गई, तू किसे दा क्या नहीं मने, तू प्रभु भगती नहीं कीती, नाम नहीं जपिया, सिमरन नहीं कीता, नेक कर्म नहीं कीते, तेरा जन्म किवें सफला।

0: शुद्ध
1: जन्म मिले है ते कहिंदे नी आउंदी प्यार छाना दे दूध नाल लग गए ऐसा मोह प्यार पे है ए मोह प्यार दुनियावी कहिंदे नी वधदा चला गया कटिया नहीं प्रभु वलो प्यार टुट गया जन्म क्यों सफला होवे।

मेरी मेरी कर दे हैं, जन्म चला गया। अवस्था इतनी वृद्ध हो गई, कहने अंत समा आ गया, ते अंत समा संगियां साथियां ने पुंडे पा दिता। आखिरी सवास ने कहने पुंडे पा दे, पुंडे पा के ना कोल जोत जगा दी। पंडित जी आ गए, मुंह च अमृत जल पाउन लग पाए, ते कहने ये आखिरी समय ते आया इंसान। हिम्मत करके कहिंदा है, मेरा पुत्र किथे? घर वाली आख्या, महाराज तुहाडे पास सजे हथ बैठे। कहिंदे ने कुछ देर बाद फिर एक आवाज आई, दूसरा पुत्र किथे? आख्या जी तुहाडे खब्बे हथ बैठे। कुछ समा फिर बीते, कहिंदे ने आखरी आख्या, मेरा तीसरा पुत्र किथे? आख्या जी वी तुहाडे चरणां विच बैठे। कहिंदे ने इतनियां गल्लां करदे इस ते मुंह आवाज निकली, जे सारे पुत्र मेरे कोल बैठे ने ते दुकान ते कौन गए? कहन तो पास अंत समा भी आया, लेकिन ध्यान प्रभु वाल नहीं गया, दुकान वाल चला गया। साहब कहिंदे ने ऐसे जन्म का की लाभ है? गुरु अमरदास पातशाह बिरध अवस्था है। ए शरीरा मेरे आ, इस जग में आए कहीं